0: Enoxy Entertainment.
1: Grace International Education and Migration, connecting life and learning since 2006.
2: ला अंक कुमार मग आश्चर्य तू डॉलर असेल
3: के करो
2: तर बनी गई
3: छिबन आई तो को कुल दिखे करे
4: हमले देखा था और कब आ रहेगा सुनाओ ने
5: दाई कार्यान्वित क्या इन्हें लाई
2: दाई
4: वो कुल दाई मने कुल दाई मने
5: ते इधर तेरा तेरा करो
2: सुनो ना बड़ी बार मग आज काटने होने हमारे पिकनिक में था अभी कभी काटने दिन है ना
5: उधर ना उधर ना
3: अभी कभी काटने में क्यों उन्चरा
4: गीत गाइदिन् लट्ठ पार्दिन् लप पार्दिन्
5: हो दाइको म एक्ताको
4: ल ठिक छ तिमीलाई गीत गाउन आउँछ
3: आउँछ
4: यहाँ सुन्ने यदि तिमीले हामीलाई दोहोरी खेलेर जित्यो भनेदेखि घाँस काट्न पाउँछ नत्र पाउँदैन
5: हार मान्यो क्या
3: कसले हार मान्यो भने छ र सुरु गरौँ
4: मिनरल वाटर।

0: मसी यीशु ख्रिस्त ला तमा याङला गाह्रो समस्याम थेन लाघम खाइबा तमन याङला ग्याप समस्या तला लाना मुख्य कुरा याङसी ओलाहा खाइबा लाबामु खाइबा याङसी ओलगा समाधान लाला लागेरी रङला शक्ति प्रयोग लालामु कि याङसी प्रार्थना यीशु ख्रिस्त ला तमा खम्बामु ओलगा याङला उत्तर लागेरी ओला विश्वास लामुला यसु र विश्वास लामा छन् हो ओल्गा परमेश्वरलाई शान्ति से यङला रिधिम शासन लाला आमेन रङ्गिला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त मात्र आशिष पिन्छु गए
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश यङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: Time check. It's 7 PM.
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।